0: हेलो
1: साइली, के छ तिम्रो हालको?
0: ठिक छु। हजुरलाई
1: मलाई साह्रै तिमी याद आउँछ साइली।